अभी पूजा रे पूंजे देखी इसके उन्हें समाते नहीं आ परंतु रिशा रिशा कराने चाहिए कहीं तो तो मंदा भी को ना बियरनेस बियरनेस ऑन से दे सितंबर देखी इसके ना यां देखो पॉइंट सिंक फेमे कहीं बुना रेडियो कहते हैं चुका देखी इसका आई भी को ना दिया यह कहते कि वह कतरीची उपतम परंतु रिशो रिशा कराने चाहिए को ना दिया।